जिस जीव आत्मा दे जीवन विच प्रभात आ गई उसने राह पा लिया, द्वेष खत्म हो गई, आत्मा परमात्मा दी एक मिकता हो गई, उसके गल विच जित दी माला पवेगी। गुरु तेग बहादुर जी दे उचारण कीते राग जैजावंती दे चार शब्द अखीर विच आए हन। जैजावंती नूं किसे भी संगीत ग्रंथ राग किसे राग दी बंस विच ना लिखना दर्शाउंदा है कि नवेकला राग है। अते गुरु महाराज जी ने जैजावंती नूं अखीर विच रख के नवेकली गल ही कीती है। गुरु साहबान ने राग नूं नवी नुहार, नवा मोड़ ते नवा गायन रूप दे के नवा वड्डा पसारा पा के आत्मिक ठंड प्राप्त करन दा हथियार बनाया। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दो गंधार, दो निषाद अते बाकी सारे शुद्ध सुर लगते हैं। जैजावंती विच कोमल गंधार दी वरतों एक विशेष ढंग नाल उसके दोवें पासे ऋषभ सुर रख के कीती जांदी है। इस दा वादी सुर ऋषभ अते समाधी पंचम है ते गौण दा समा रात दा दूजा पहर मन्निया है। सरवण करो रे मन कौन गत होए है तेरी, भाई कमरपाल सिंह जी पासों। दूजे शब्द गायन कर रहे हैं डॉक्टर दर्शन सिंह जी नरूला। शब्द दे बोल हैं राम सिमर राम सिमर, ए है तेरा काज है। पहला शब्द रे मन कौन गत होए है तेरी,

राज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले, कहूं फूल होए के भली राज पूले, कहूं भवर होए के भली बात, कहूं असब होए के बह बेग ऐसे, कथो मैं न आऊं कथो तो है कैसे, कहूं न आऊं कथो तो है कैसे कथो।

सावा नित खड़ी मुझो बनबाली राम राजी तार गुर हर मार जाली मेरे मंत्र नाम धार है खूने जाली जन्नान सदगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली सुख मैला सच श्री पत्र चार बच्चे से देखो

अरे दात मंगो आज पूर्णमासी दा ए समाते पूर्णमासी भी ओ जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रा च विसाओ हिरदे ते विसाओ आज राय बुलार अरदास पिया कर रहे आओ जिसने धरती नु पुटे ओनू पानी जरूर मिलिया जिसने खोजिया ओनू मालिक लभा है ते जिस सिख ने मन जोड़ के बेनती कीती है ओदी अरदास जरूर सुनी जाए सारे आओ प्यारी साध संगत अज दा ए समा ए रात खास बख्शिश वाली है की पता हो जाए बख्शिश कोई वड्डी गल नहीं तो आओ तरला तो करो उद्दम तो करो ओ केड़ा उद्दम है अपने मालिक अगे अरदास सब तू वड्डी दात है जो गुरु ने सिख नू बख्शी है अरदास जिस अरदास दे सदके सिख गुरु नाल जुड़े।

पिताजी मेरे नंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना कहो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावन ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण ता रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहने राय नु की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नु मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे कारुच दूध है, माता बेसुध पई है, दूध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन स्नान किया, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखिया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लेंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोल दियां कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुके मुंह च पा लैंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उत्ते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने हैं कीर्तन दी समाप्ति कर दे। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सचे पातशाह। हजूर कहन लगे हां मरदाने हैं, तारा भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइला बन गईयां न, पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी। मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है। ए जरा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सदगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन, किसे गुरमुख ने लिखे है कि तार विनदी चीजा परोम दीए, तार विनदी चीजा परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी, पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जाती। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी। मरदानिया नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 सालां तों विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तों, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानके आने दियां गलियां च पिया जांदा आ खुशी वाली। पर मरदाना काला है, 12 सालां तों बाद घर आया है, एना कलम काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तलवंडी आया ते हजूर ने मरदाने नू किया, मरदाने ए पढ़ की।

बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी का प्रभु सुहावना छठ छठ दुनिया अंदर न जावना मन दर्द न अपना आपे ही किता पावना।

आप जी विसाखी का पुरब मना रहे हो, कलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन, ते शब्द भी उन्हां दा ही है कलगीधर पातशाह जी का। दोवे शब्द राग विच दास पढ़ेगा, दोवे शब्द कलगीधर पातशाह जी देने। पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा, क्योंकि आप जी नूं कई बारी समझ नहीं आवेगी कई तुका दी। अस्थाई दी तुक है, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, कि गुनन को पहार है। अकाल उस्तत, ओ वाहिगुरु गरीबां दा मालक है, दीनन को दाता है, ते दुष्टां दा ओ नाश करदा है, ते अपने सेवकां संतां दी ओ रक्षा करदा है, ते ओ गुनां दा पहाड़ है। पहाड़ मतलब दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुनन को पहाड़ है। तेज हूं को तर है, के राजसी को सर है, के शुद्ध

जगता की बाण है कि बुद्ध को उधार है, सुंदर स्वरूप है के भूपन के भूप है, के रूपों के रूप है के कुमत को प्रहार है। ये शब्द रीत जो राग दास शुरू कर रहा है, राग है भटियार। भटियार भी दो तीन तरह गाया जाता है, बिलावल ठाट नाल, मारव ठाट नाल, ते अस्थाई है यदि दस मात्रा छपता। उस तो बाद इसे ही बारह मात्रा विच करके दास ने गाना है। सब तो पहला दस मात्रा झपता, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। आप जी श्रवण करो। उस तो बाद जो अगला राग होएगा वो होएगा समेदा राग शुद्ध सारंग। मेरी अभय बिनती सुन लीजै, हे रव हे सस हे कर नानिद, मेरी अभय बिनती सुन लीजै। दूजा शब्द रीत राग जेड़ा शुद्ध सारंग विच तीन ताल विच होवेगा, पहला जपताल ते इकताले विच आप जी श्रवण करो।

0: सो अंत
1: सो बहर अनंत
0: कट कट
1: व्याप रहा भगवंत
0: तर्म
1: है आकाश प्यार
0: अर्ब लोग।

उदत जाति जिनसी रंगी उदत जी जहां उदत नेकियां उदत बदियां उदत मान अपमान उदत पौन पाई बैसंतर।

छिन अलूरी चटणी साध न पुजे लख लख मेवा लाख भगत जगत विच लिख न गए गुरु सिखी सेवा लाख भगत जगत विच